ような愚弄な感じがし、イラキとスリジメクトスリジマラジプテラジテシプテアクサルダマリアエジャパエシプラプティネワッサムジャエアネタメジョマラムマルテप्रतीति आवती नहीं अबे बड़ा बैठा है ये बंदू प्रतीति आवती नहीं ये आवे एक काम थे ये तो बीजू का ये ना समझ पड़े तो सतपुरुष ना चीले चीला जता रहा अपनी पाशर पाशर जाइए એટલે એમની પાછળ પાછળ એટલે કે એમને જે રુચે છે ગમે છે એ વાત કરવી એટલે આપણે સીધા અક્ષરધામમાં બેસી જઈએ.

ऐश्वर्यमुक्तो लयी शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालु ने नित नमो सर्वावतारी। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय।